0: अरे लोसम थे शिरंगा रंगे ना शिमरी शिमजे सहाची कसका जेम सहाची बजी जी दे अरे लेवा दी सुसु थमजे चाय यून संगी
1: चेनर रंगे सम तो न्यू इबे कैसे रंगे ये किम्बू केले गुंजे चेतु तुम तो गुडे पिना रंग तो बच्ची गया था मोटी जी मैं बस उनका जी के जेम सी
0: वन पाम तो बे माहूं बता चेन तादा मी तुम लियो तो तो थमजे चेते तो 谈得比较对比呢，面包从家的到我送进了马斯罗街，永不再有幺日了。你叫我，我在哪里我姑爷用不着，听这说呢，我来点家送那多。我你们都代表老送的拿，我可是送不有没打，可是我有没，让个心没吧。现在让还过多。
2: 我车子给不接，电力错过去过，我错过又没去监督多，热天人可多一呢，不管哪话去，我等下从那这牛买吧，现在那水电不缺你们多，热天白天给我从那这土里，
3: 老婆，从多少斤呗？老婆，你还缺多少多？
1: 你去哪都是周英的，去哪来考虑那个三个小，你也在看不说什么哟。嗯，的个是。王月，谈到那个小点子，我那工资是拉多。不过，你讲了，让个年对头了，年薪一涨，我他谢谢。这三年让你啊。 怎么啥事？今年年热完了，既然你第一脱不消，你身体呢？既然你做几个月没都休息，今年几不用休？怎么啥？
0: 那不，那你这。
4: 让该先被放老师一点，等到去的配件人一点。去的配件要么多。某些现在好久了，现在就是没。他的几点这学差不多了，得来教室偷下。第二天批开了要的，好久要个吃鸡，也吃上些。好久去给那老李，不管哪话去，各自点面子了，不行个要嘛的。
0: 现
4: 在，归拢咱们明白，泡沫地主，偏就当不理。
5: 我第一天了，什么这些人都，今天选择前个月呢，日不三不大，一万三不七千不过着。
4: 客人也黄也有穿大的，好久了送也追不的。好久讲过要的，看你没来不的，客人也我说这样子三不的，一年三不难了。 点点能水的开药的。

0: ये देना किराज लोचुंगे समझूंगी मुझे चेंज तो ये ने ये संभा नराजू सुगुगी समलोटिंचे कुंभ रिरि चेनी लेगत चेनो देबो मेट्रो संभी जबा
1: जुसुदार मिजीगी नमजानिं कुचेदो कुंमी निम्दो याचिची माचो चाउचे योंगा ये लाख समसुन याचेदो ये रंगमे तो याचि सुन माचो चेनी
2: 公司的念头你哭切切连接给钱的可这多这么多这一把你心给一年四季才年两节出楼用被向前了一起约看一次呢向前了就哪有这
1: 天界的今天王老师拖欠了修意既然给俺一起的这能个意思你可不得对你天界的下策卡西天界下策天界下策的村所也好弱的爹爹被民宿让给民老师修意啊
0: 这先不领他先不领他先这个不下了
1: 天大前不停止既然给念念俺做的垂头是当晚的了既然给送不他个这连接公墓所今天忘了公墓所一年退出咱查过去马赛天地的长期年火那个他去去完都
2: 让给几家年火是不是现实公司几家年的啥的下喂喂喂当都从做我有账啊没了妈别去给我妈谁
1: 막외마를

0: ताई ये दाने थे जे, चिंतु का चिंतु निज़े सु, क्यों भी क्यों मिलवे?
1: चाहो शे ना, क्यों भी क्यों मिलवे? कहीं से ना, चौहान के ऐसे चुवार बा।
0: मासे, रंगे न्याचे ले तो बस चेप रे बा।
1: तुझे मासे, सिंफु ला मरांग जिंदा यो शे, न्याचे ना, मरांग ला जो माचा शा संबी।
0: उन्हें जी बे
1: 이집